0: श्री रामलला भगवान की
1: जय,
0: भगवान की
1: जय,
0: श्री कौशल्यानंदन भगवान की
1: जय,
0: श्री दशरथ नंदन भगवान की
1: जय,
0: श्री कैकेयी नंदन भगवान की
1: जय,
0: श्री सुमित्रा नंदन भगवान की
1: जय,
0: श्री चारों भैयन की
1: जय,
0: श्री हनुमान जी महाराज की
1: जय,
0: श्री राम जन्मभूमि की
1: जय,
0: श्री कृष्ण जन्मभूमि की
1: जय,
0: श्री काशी विश्वनाथ की
1: जय,
0: श्री अयोध्या धाम की
1: जय,
0: श्री सरयू महारानी की
1: जय,
0: जगत गुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी महाराज की
1: जय,
0: गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की
1: जय,
0: समस्त पूर्वाचार्यों की
1: जय,
0: सर्व संत वैष्णव भगवान की
1: जय,
0: सत्य सनातन धर्म की
1: जय,
0: गो माता की
1: जय,
0: भारत माता की
1: जय,
0: प्रातः

विप्रदेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निरमित तनु माया गुण गोपार। सियावर रामचंद्र जी की जय। श्री अयोध्या राम जी लला जी की जय। श्री पवन सुत हनुमान जी की जय। श्री उमापति महादेव जी की जय। श्री रमापति रामचंद्र जी की जय। श्री वृंदावन कृष्ण बलराव जी की जय। बोलो भाई सब।

स्वस्ति साम्राज्यम भौज्यम स्वराज्यम वैराज्यम पारमेष्ठ्यम राज्यम महाराज्यमाधिपत्यमयम्

भर्जनम भवबीजानाम मर्जनम सुख संपदाम तर्जनम यम दूतानाम राम रामेति गर्जनम श्री सीताराम नाम महाराज की। संत बड़े परमार्थी वेद धरे अवधूत राम नाम की गर्जना भाग जाए यम दूत श्री सीताराम नाम महाराज की। श्री राम लला भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री राम जय जय श्री राम जय जय।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

everybody back.

प्रस्तुत है श्री मद भगवद गीता का सरल व संगीतमय हिंदी काव्यांतरण श्री गोविंद गीता अध्याय 3 कर्मयोग। पिछले अध्याय में श्री भगवान की वाणी से भ्रमित अर्जुन पूछता है कि हे जनार्दन, मुझे इस युद्ध रूपी घोर कर्म हेतु प्रेरित करने का क्या अभिप्राय है। प्रत्युत्तर में श्री कृष्ण उसे कर्मयोग, ज्ञान योग वे कर्म बंधन के सिद्धांतों को समझाते हैं। वे यज्ञ की महिमा का भी वर्णन करते हैं। अर्जुन पूछता है,

श्री कृष्ण महापुरुषों द्वारा उत्तम आचरण एवं जनहितकारी कर्मों की आवश्यकता पर बल देते हुए मानव मात्र को अपने प्राकृत गुणों से प्राप्त स्वधर्म का निर्वाह करने को कहते हैं।

अर्जुन के पूछने पर वार्ष्णेय कहते हैं कि रजोगुण से उत्पन्न काम व क्रोध मनुष्य का महान शत्रु तथा पापी होता है। श्री भगवान इस काम रूपी दुर्जय शत्रु पर स्थिर मन व बुद्धि से विजय प्राप्त करने की प्रेरणा देते हैं।

नदी यानी जीवन धारा, जिसकी गोद में सदियों से पोषित और विकसित होती रही है मानव सभ्यता और संस्कृति, जिसके किनारे साक्षी हैं इतिहास के। स्थापत्य की विशिष्ट शैलियों का जहां होता रहा है जन्म और निर्मित होते रहे हैं हमारे पूजा स्थल, ज्ञान के खुलते रहे हैं चक्षु और पाते रहे हैं लोक से परलोक तक के रहस्यों की दिव्यताएं। नदी न केवल देती है जीवन मनुष्यों को, बल्कि माँ की तरह पालती है जगत के सभी प्राणियों और वनस्पतियों को। नदी का अर्थ मात्र रहता पानी नहीं है, पुरातन से नूतन के विभिन्न जीवन स्वरों की राग मालिका है नदी।

0: सिंधु जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु।
1: भारत उपखंड की सात महानदियों में से एक है गोदावरी। पुराण प्रसिद्ध है कि मानव के जीवनहार के लिए इसे पृथ्वी पर लाए महर्षि गौतम। पश्चिम की घाटियों में एक छोटा सा गांव है त्र्यंबकेश्वर। 12 ज्योतिर्लिंगों में त्र्यंबकेश्वर भी एक है। महाराष्ट्र में नासिक से 28 किलोमीटर दूर चारों ओर पहाड़ियों से घिरा हुआ वही है ब्रह्मगिरी। गोदावरी का उद्भव यहीं हुआ।
2: जय देव जय मंगलमूर्ति दर्शन मात्रे मन स्वर्णे मात्रे मन कामुना प्रति जय देव जय देव कर्पूर कर्णम कर्णावतारम नरदारम देवेंद्रारम सदासंदम नम्यामी मंदारमाला गुलदारगाय कपालमाला शशेखराय दिव्यांबराय दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय कर्पूर महामंगल निरांजन दीपम दर्शयामि।
1: अनेक दंत कथाएं प्रचलित हैं यहाँ।
3: महर्षि गौतम ने कोसों दूर से आकर ब्रह्मगिरी पर्वत पे कुटिया बनाई और ठोर तपस्या की। महादेव प्रसन्न हुए। महर्षि ने कहा,
4: हे प्रभु, आपकी जटा से गंगा माई की एक और शाखा प्रवाहमान हो।
5: तब करुणामय शिव जी ने आनंद का तांडव किया और अपने जटाजू ढीले कर एक पतली सी धार छोड़ी। शिव जी का आशीर्वाद है गोदावरी।
3: महर्षि गौतम के बारे में एक और कथा कही जाती है।
5: इस प्रदेश में एक बार भयंकर अकाल पड़ा। महर्षि गौतम ने अपनी तप शक्ति से खेत जोतकर अनाज पैदा किया और सभी को भोजन कराया। कुछ ईर्ष्यालु लोगों ने एक दुबली गाय उनके खेत में चरने के लिए छोड़ दी। महर्षि ने उस पर एक कुश चलाया, गाय मर गई। गो हत्या के पाप सचने के लिए उन्होंने घोर तप किया। उस पाप को धोने के लिए स्वयं गंगा जी को उपस्थित होकर उस स्थान से बहना पड़ा।
1: गौतम महर्षि की ये गंगा ही गोदावरी बनी। कश्यप, अत्रि, भरद्वाज, विश्वामित्र, जमदग्नि और वशिष्ठ सात शाखाओं में गोदावरी को आगे लाए। धवलेश्वर के सामने ये नदी दो शाखाओं में बट गई। पूरब में गौतमी

0: पश्चिम में वशिष्ठा और वहां से फिर दो शाखाएं होकर पूरब में सागर से संगम।
1: नमस्कार राजेश दीक्षित जी, हम लोग पर्यटक हैं। गोदावरी नदी के जन्मस्थल से लेकर सागर संगम तक की यात्रा हमारा उद्देश्य है। ब्रह्मगिरी मंदिर आपका आराधना स्थल है, कृपया हमें जानकारी देंगे?
2: महाराष्ट्र में सबसे बड़ा नाथ संप्रदाय है जो सबसे मान्यता प्राप्त है। हर 12 बरस में इधर एक कुंभ मेला होता है जहां साधु लोग अपने आध्यात्मिक अनुभव आपस में बयान कर आपस में चर्चा करते हैं, उसको कुंभ मेला कहते हैं। इधर ब्रह्मगिरी पर्वत है, उसको प्रदक्षिणा लगाते हैं श्रावण महीने में। ये जो त्र्यंबकेश्वर आद्य ज्योतिर्लिंग है, इसी ज्योतिर्लिंग को राजा ये पदवी है। यहाँ गौतम ऋषि ने जहाँ तपस्या की है वो भी मंदिर है। तो ब्रह्मगिरी जो शिखर है ब्रह्मगिरी पर्वत का, उससे गोदावरी का उगम स्थान है। इधर पेशवे है जो पहले बालाजी विश्वनाथ पेशवे, उन्होंने इस मंदिर के निर्माण का आदेश दिया और तब से चालू हो गया था। श्रीमंत माधवराव पेशवे उनके काल में ये पूरा हुआ। ऐसा सभी वारकरी संप्रदाय हो या नाथ संप्रदाय हो या वामाचारी तांत्रिक संप्रदाय हो, सब संप्रदाय इस भूमि से जुड़े हुए हैं। ब्रह्मा विष्णु और महेश, ब्रह्मदेव की पूजा सिर्फ यही होती है। अपने हिंदू धर्म ब्रह्मदेव की पूजा कभी नहीं करते, लेकिन इधर वो इस लिंग में ब्रह्मदेव की पूजा होती है। दूसरी बात ऐसी कि शिवलिंग को हम प्रदक्षिणा नहीं लगाते, लेकिन यहाँ शिवलिंग में तीनों भी है, विष्णु और ब्रह्मा, त्रिगुण स्वरूप है ये त्र्यंबकेश्वर। तो इसलिए इसे आद्य ज्योतिर्लिंग, सबसे पहला ज्योतिर्लिंग और त्र्यंबक राज कहते हैं।
0: ये है कुशावर्त। गंग द्वार से निकली गंगा कुशावर्त पहुंचकर ही तो गोदावरी बनी।
1: ये है केदारेश्वर। लगभग 300 साल पहले ये मंदिर बनाया गया था।

0: शुक्ल यजुर्वेद का पाठ चल रहा है। ये गंगा गोदावरी का मंदिर है। हमने सुना है कि यहाँ माघ शुक्ल दशमी को गोदावरी का जन्मदिन मनाया जाता है। 12 दिनों का उत्सव।
1: अगला उत्सव 11 जनवरी 1991 को होगा। लाखों लोग आते हैं उत्सव देखने। मानव मानव के बीच ऊंच नीच का भेदभाव न हो, यही है नाथ परंपरा का मौलिक उद्देश्य। सुप्रसिद्ध नाथ परंपरा का जन्म त्र्यंबकेश्वर में ही हुआ था।
2: गोदावरी के पावन जल से पल्लवित और सिंचित है नासिक, युगों से पित्र। कृतयुग में ये पक्षनगर था, त्रेता में त्रिकंटकम, द्वापर में इसे नवशिखा कहा गया, जो समय के साथ बदलते बदलते नासिक बन गया। गोदावरी का पूर्व तट पंचवटी कहा जाता है। बृहस्पति के सिंह राशि में प्रवेश करते समय मनाया जाता है कुंभ। कहते हैं
3: एक बार गरुड़ जब अमृत कुंभ को भूमि पर ला रहे थे, तब उसमें से 4 बूंदें भूमि पर गिरी थी। जहां वे 4 बूंदें पड़ी, उनमें नासिक भी एक है। बाकी 3 हैं हरिद्वार, प्रयाग और उज्जैनी, और इन स्थानों पर कुंभ का मेला लगता है।
4: रामकथा प्रसिद्ध है पंचवटी। लक्ष्मण ने शूर्पणखा को यहीं विरूप किया था। यह पांडवों और बुद्ध की गुफाएं भी हैं।
1: नासिक जितना अतीत के लिए प्रसिद्ध है, उतना ही आधुनिक तीर्थों के लिए भी। तुमने ये जानकारी अपनी डायरी में लिख ली है ना? आओ अब हम लोग करेंसी प्रेस देखने चलेंगे।
0: और हाँ, थर्मल पावर स्टेशन और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का कारखाना अपनी अलग विशेषताएं लिए हुए हैं। कहते हैं नासिक जिले में 100 से अधिक बड़े उद्योग हैं।
1: गोदावरी नदी पर एशिया का दूसरा बड़ा मिट्टी का बांध सॉइल डैम बनाया गया है, जो 10 किलोमीटर दूरी पर है। इसे ही गंगापुर डैम कहते हैं।
0: अब यहाँ से हमारी यात्रा

0: गाथा सप्तशती विश्व का पहला संकलित काव्य संग्रह है। अपने राज प्रासाद में बैठकर गोदावरी के तरंगों को निहारता हुआ वह महाराष्ट्रीय प्राकृत में झूम झूम कर गाता था, सच्चम भन गोला वई पूव समुद्रेण सया संति सालाहण कुल सद्यसम जईते कूले कूलमत्थी। सच बोलो गोदावरी, पूर्व समुद्र तक बहते जाती है, क्या सातवाहन कुल जैसा पराक्रमी और वैभवशाली एक भी राजकुल तेरे तीरों पर बस हुआ है? यह थी सातवाहनों की विजय गाथा। यह भूमि संतों की है, यह भूमि योद्धाओं की है, भट्टोजी दीक्षित जैसे वैयाकरणों की है जिन्होंने लघु सिद्धांत कौमुदी पर टीका लिखी। यह भूमि चित्रकारों की है, लेकिन इन खंडहरों से गुजरते हुए एक भावना मन में जाती है कि एक समय था कि जब पैठन समूचे महाराष्ट्र का केंद्र था, एक समय था जब पैठन समूचे भारतवर्ष का केंद्र था, एक समय था जब पैठन समूचे यूरोप और आशिया खंड का केंद्र था।
1: पैठन यानी मंदिरों का नगर, सात वाहनों की राजधानी, प्रतिष्ठान नगर, अनेक विभूतियों की जन्मस्थली। सन 1533 में स्वामी एकनाथ का जन्म यहीं हुआ था। 700 वर्ष पहले चक्रधर स्वामी यहां पधारे थे और महानुभाव पंथ की स्थापना की थी। नदी के किनारे पहले बनते थे मंदिर और अब बन रहे हैं बांध और कारखाने, जो समृद्धि और विकास के चरण हैं। पैठण बांध के अलावा मजलगांव और दुना बांध भी हैं। लगभग 4,60,000 एकड़ में सिंचाई की जाने लगी है। सिंदपण, पूर्ण और दुधना आकर ही गोदावरी में मिलती हैं। नांदेड़ होकर गोदावरी आंध्र प्रदेश के तेलंगाना में बहती है और पोलवरम के पास मैदान में प्रवेश करती है। धवलेश्वरम के पास आकर दो शाखाओं में विभाजित हो जाती है, गौतमी और वशिष्ठा।
2: कहते हैं देश में तीन स्थानों पर ही सरस्वती के मंदिर हैं। इनमें से एक मंदिर बासरा आदिलाबाद में, मूर्ति रेत की बनी है।
3: कालेश्वर महाक्षेत्रम को त्रिवेणी संगम के नाम से भी जाना जाता है। इसी क्षेत्र में गोदावरी उत्तर की ओर से मुड़कर सीधे पूर्व दिशा की ओर बहने लगती है। अर्धचंद्राकार दृश्यावली बड़ी मनभावन लगती है और द्राक्षारामम का मेश्वर, श्रीशैलम का मल्लिकार्जुन मंदिरों के साथ कालेश्वर के मंदिर के कारण ही इस प्रदेश को त्रिलिंग देशम भी कहा जाता है।
2: रामावतार के 25 क्षेत्र स्थानों में भद्रगिरी प्रसिद्ध स्थान है। यहाँ श्री आदि शंकराचार्य भी पधारे थे।
1: गोदावरी के किनारे किनारे अनेक प्रसिद्ध मंदिरों का स्थापत्य हमें अपने गौरवशाली अतीत से साक्षात्कार कराता है और जहाँ सभ्यता, संस्कृति, साहित्य, धर्म, इतिहास के विकास की कहानी कहता है, वहीं वर्तमान में भविष्य की जो नींव रखी जा रही है उसका सुख भी देता है।
2: आदिकाल की गाथा आदिवासियों की संस्कृति के बारे में जाने बिना अधूरी है। हैदराबाद स्थित आदिवासी संस्कृति अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्था के संयुक्त निदेशक श्री चंचू राजू से इस बारे में जानकारी मिल सकती है।
4: ఆదివాసీ సంస్కృతి పరిశోధన మరియు శిక్షణ సంస్థ అనేది మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో 1963లో హైదరాబాద్లో నెలకొల్పన అండి. ముఖ్యమైనటువంటి అతి సున్నితమైనటువంటి విషయాలను గిరిజన సంస్థ
2: ఈ సంస్థకి స్థాప

0: घटना सन 1963 में थी। मुख्य रूप से यहाँ पहाड़ी लोगों की आर्थिक और सामाजिक स्थितियों का अध्ययन किया जाता है। आंध्र प्रदेश में इनकी 33 जातियाँ हैं। अधिकारियों को कक्षाओं के आयोजन के द्वारा इनसे परिचित कराया जाता है। हमारा एक ऐसा विभाग भी है जो ये देखता है कि सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का लाभ इन्हें मिल रहा है अथवा नहीं, क्योंकि कई गैर पहाड़ी लोग भी पहाड़ी होने का प्रमाण पत्र पाने की कोशिश करते हैं, जिससे वे भी उनके समान लाभ प्राप्त कर सकें। शिक्षा के प्रसार के लिए विशेष योजना आरंभ की गई है। आश्रम पाठशालाएं खोली गई हैं। पढ़े लिखे नौजवानों को प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए सभी तरह से तैयार कराया जाता है।
1: आर्थिक योजनाओं की जानकारी लेते हैं श्री विद्यासागर से।
2: आर्थिक अभिवृद्धि पथकाल ने पद्धत प्रकार जरूरत मोटमोद గిరిజన మాగాణ సమారాధనం అనే కార్యక్రమం కిందట ప్రభుత్వ భూమిని దాన్ని చూసి కొల్చి వాళ్ళకి పట్టాలు ఇచ్చి ముందు భూమి
3: సర్కార్ నే అనేక ఆర్థిక కార్యక్రమ హాత్ మే లియే హై భూమి ఔర్ ఉస్కే పట్టే దేనా భూమి కో ఉపజావు బనానా కువే గహరే కువే తాలాబ్ ఆది సే లిఫ్ట్ సించాయి కి సువిధా దేనా 3 से 5 वर्ष तक उनकी देखभाल के लिए खर्चा भी सरकार देती है। रेशम उद्योग के लिए बगीचे लगाए जाते हैं। उनकी आमदनी बढ़ सके और रोजगार के नए अवसर मिल सके, इसके लिए हम प्रयत्नशील रहते हैं। 15 वर्षों के लिए योजनाएं बनाते हैं।
4: अपरिचित परिचित होने का सुख कितना मधुर होता है, ये हम गोदावरी की यात्रा के समय ही जान सके हैं। हमारे साथ संस्मरणों की अनेक डायरियों की पूंजी इकट्ठी हो गई है
1: और आज हम अपने आप को संपन्न समझ रहे हैं, क्योंकि हम जान सके हैं अपना अतीत और वर्तमान। इस महानदी के तट पर विकसित हो रही सभ्यता को अपनी आंखों देखा और किए हमने हिमालय से समुद्र तक की एकता के दर्शन। जिसे किताबों में पढ़ते रहे उसे सामने देखने का सुख सचमुच वर्णनातीत है।
5: ओम अधात पंचांग रुद्राणाम ओंकार मंत्र संयुक्त ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षं तस्मै नकाराय नमो नमः ओम भूर्भुवस्वः ओम नम अम कंखंगंगम।
4: गोदावरी के साथ हम भी अपनी यात्रा पर आगे बढ़ रहे हैं। हमारी आंखों के सामने सागर संगम के मनोहारी चित्र तैर रहे हैं।
1: लेकिन हमारी यात्रा का अगला पड़ाव तो है कुवुरु। शैव से वैष्णव की ओर मुड़ेंगे अब हम यहाँ। मेरा मतलब है कि गौड़िया मठ चलेंगे और वहाँ हम नादल्ला वेंकटराव जी से मिलेंगे।
4: इस स्थान की विशेषता क्या है?
1: चैतन्य महाप्रभु यहाँ पधारे थे और 10 दिन तक रहे थे।
4: अच्छा, तो चलो

0: రాధాకృష్ణుల యొక్క సమ్మిళితావతారమైనటువంటి శ్రీ చైతన్య మహాప్రభువు
1: जब श्री चैतन्य महाप्रभु यात्रा करते हुए यहाँ आए थे तब श्री रामानंद रायलू जो कि महान भक्त थे उनके साथ उनकी 10 रातों तक चर्चा हुई। विषय था मानव जीवन की सार्थकता क्या है। प्रश्न करते रहे श्री चैतन्य महाप्रभु और उत्तर देते रहे श्री रामानंद। मधुर भक्ति बड़ी महान है। यहाँ गुरु रूप गोस्वामी ने मठ की स्थापना की 1932 में। तब से पौराणिक विषयों पर चर्चा चलती है और पुस्तकों का प्रकाशन होता है।
2: यहीं पास में स्थित है खाद का कारखाना। यहाँ से कॉस्टिक सोडा का बड़े पैमाने पर निर्यात किया जाता है। पास ही रॉकेट ईंधन उत्पादन करने वाला कारखाना है जिसका विशिष्ट स्थान है।
3: पट्टिसाद्रिसमं क्षेत्रम नास्ति ब्रह्मांड नमो देवो श्री वीरभद्र नमो देवो न भूतो न भविष्यति।
4: पट्टी क्षेत्र का पौराणिक महत्व भी है। काकतीय राजा प्रताप रुद्र और बाद के रेड्डी राजाओं ने इस क्षेत्र के उत्थान के लिए प्रयास किए हैं।
2: और राजमहेंद्री का नाम आ ही श्री विष्णुवर्धन महाराज से लेकर विजयनगर राजाओं के नाम उभरने लगते हैं।
4: टी प्रकाशम पंतुलु जैसे नेता, कवि श्रीपाद श्री कृष्णमूर्ति शास्त्री, महान कहानीकार श्रीपाद सुब्रमण्य शास्त्री, उपन्यास लेखक चिलकमर्ति लक्ष्मी।

0: येशुदास जी, आप इस गौतमी ग्रंथालय के अध्यक्ष हैं, हमें इसके बारे में जानकारी दीजिए ना।
1: राजमहेंद्र लो कवि वीरेशलिंग अनुचरुलैन नालं कृष्णाराव गारु स्थापिंचिन వీరేశలింగ గ్రంథాలయం, వసురాయ గ్రంథాలయం, రత్నకవి గ్రంథాలయం వంటి ఎన్నో గ్రంథాలయాలను
0: రాజమహేంద్రి మే నాలం కృష్ణారావు జీ నే సన్ 1898 మే ఇస్కి స్థాపన కి. బాద్ మే ఇస్మే అనేక గ్రంథాలయ మిల్ గయే. యహాన్ లగ్భగ్ 56,000 గ్రంథ హై తెలుగు, అంగ్రేజీ ఔర్ హిందీ కే. ముగల్ రాజాఓ కే జమానే మే ఛప్ ఎన్సైక్లోపీడియా బ్రిటానికా, సంస్కృత బైబల్, అమూల్య పురాణి పత్రికాయ, ताड़पत्र पर ग्रंथ, ब्रज भाषा में लिखे कवि अभंग की प्रति आदि उपलब्ध हैं। रीडर्स एसोसिएशन के अंतर्गत यहाँ गोष्ठियों का आयोजन होता रहता है।
2: पुरातत्व के संबंध में जानकारी के लिए किससे मिलें?
3: पुराकालीन अनुसंधान संघ के सचिव श्री यादगिरी नरसिम्हा राव जी से।
2: नमस्कार नरसिम्हा राव जी, सुना है यहाँ खुदाई हुई
0: और उसमें अनेक महत्वपूर्ण वस्तुएं मिली हैं।
4: అనేక సంవత్సరాల నుంచి అనేక విధాలుగా పురావస్తు సేకరణ జరుగుతోంది. ముఖ్యంగా
5: కయీ సాలో సే యహాన్ పురాకాలీన వస్తువు కా సంగ్రహ హో రహా హై. యహాన్ కే సర్కారీ మ్యూజియం మే అనేక అనుపమ కాలఖండ హై. శిలాలేఖ ఔర్ తామ్రలేఖ భీ హై, సుందర మూర్తియాం భీ హై. కోయీ 10 వర్ష పూర్వ ఖుదాయి మే అద్భుత నందీ కీ ప్రతిమా ప్రాప్త హుయీ హై, కాకతీయ రాజాఓ కే జమానే కీ. दूसरी शताब्दी के एक बौद्ध विहार का भवन भी हमें मिला है। ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी का एक औजार भी मिला है।
0: अरे इस ओर तो देखो, जीव कारुण्य संघ, चलो भीतर कर देखते हैं।
3: नमस्कार श्रीमती रमन चौधरी, हम लोग पर्यटक हैं, गोदावरी दर्शन के लिए निकले हैं। आपकी संस्था का बोर्ड पढ़ा तो जान की जिज्ञासा हुई।
6: पवित्र गोदावरी तीरंलो राजमंड्रिलो गौतमी जीवकारण संघं 1940 संवत्सरंलो स्थापिंचबडिंदि. मुख्यंगा अनाल सेव, कुष्ठरोगुल सेव, अनाथ प्रेत संस्कार
3: 1940 में इसकी स्थापना हुई। अनाथ लोगों की सेवा, कोढ़ियों की सेवा, अनाथ शवों का दाह संस्कार, बाढ़, तूफान, आग, दुर्घटना आदि विपत्तियों के समय राहत देने और समाज निर्माण के काम चलते रहते हैं। सर्वधर्म समानता का प्रचार हमारा मुख्य उद्देश्य है। नारी कल्याण और सामाजिक वन योजना आदि कार्यक्रम भी चल रहे हैं। अनाथ, वृद्ध आदि के लिए चिकित्सा और भोजन की सुविधाएं भी दी जाती हैं।
7: गोदावरी पर धवलेश्वर के पास बना बांध अपनी विशेषता लिए हुए है। 1852 में यह बांध बनकर तैयार हुआ था। इसे सर आर्थर कॉटन की कल्पना का साकार रूप कहा जाता है।
0: लोग उन्हें आधुनिक भगीरथ कहते थे। नया बांध बन जाने के बाद पुराने बांध के नमूने सुरक्षित रखे गए हैं। गोदावरी की यात्रा भी दर्शाई गई है।
3: और महान इंजीनियरों श्री विश्वेश्वरैया, केएल राव और एनजी के मूर्ति के तैलचित्र भी लगाए गए हैं। ये भी बताया गया है कि उन दिनों कैसी परिस्थितियों में ये बांध बनाया गया था। सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर श्री बैंक रेड्डी से प्राप्त करते हैं कुछ और जानकारी।
8: आनेकट निर्माणों तो गोदावरी डेल्टा प्रांतम पंट पोला तो सस्यश्यामलमैंदि। गोदावरी तूर्पु डेल्टा 258,000, गोदावरी मध्य डेल्टा
9: बांध के निर्माण से गोदावरी का डेल्टा उपजाऊ हो गया है। धान मुख्य उपज है, एक और केले के बगीचे हैं। अकेले धान की पैदावार लगभग 35 लाख टन तक पहुंच गई है, जिसका मूल्य कोई 600 करोड़ रुपए से भी अधिक होता है।
7: करीब 150 वर्ष पुराने इस बांध के पास ही नया बांध बनाया गया है, जो 1989 में बनकर तैयार हुआ। प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल कर करीब 100 मेगावाट बिजली पैदा की जा रही है। दक्षिण भारत में इस तरह का प्रयोग पहली बार यहीं किया।

0: किया गया है।
1: गोदावरी यात्रा का एक भाग कोरपल्ली में समाप्त हुआ। हाँ, तो अब हमारी यात्रा का अगला चरण आरंभ होता है।
2: यानी अब हम कोनसीमा मंदिरों के घर में हैं और यहाँ से पहुंचे मुक्तेश्वर।

0: चारों तरफ धान के खेत और नारियल की पेड़ नजर आ रही है। कहते हैं यहाँ तुम खादी भी बनती है।
1: और एक अनोखी बात देखी, पता ही नहीं लगता कि एक गांव की सीमा कब खत्म हो गई और दूसरे की शुरू।
0: मेरी डायरी में लिखा है कि नरसापुरम में बुनाई का काम बहुत अच्छा होता है। श्री सत्यनारायण को लेस मेकर अवार्ड मिला है। चलो उनसे मिलकर बात करते हैं।
2: लेसर ने लिख लो मतलब
3: लेस में हमारा दर्जा अव्वल है। हमने यूरोप में नया मार्केट बनाया। करीब 1.5 करोड़ रुपए के माल का हम निर्यात करते हैं। हम इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लाने का प्रयास कर रहे हैं। हम क्वालिटी पे ज्यादा ध्यान देते हैं। दूर दूर तक इसकी प्रसिद्धि है।
1: श्री आरामम चालुक्य और पल्लव राजाओं के शिल्प के वैभव का प्रतीक है यहाँ का गोपुर। ये गोपुर राज्य के देवालयों में सबसे ऊंचा है। कहते हैं ब्रह्मा जी और वशिष्ठ जी ने यहाँ तप किया। यहाँ सागर और वशिष्ठा गोदावरी का पवित्र संगम होता है। माघ शुक्ल नवमी से लेकर पूर्णिमा तक यहाँ भगवान का कल्याण मनाया जाता है। लाखों लोग यहाँ आते हैं।
4: ओम अधात पंचांग रुद्रानाम ओंकार मंत्र हम
1: ब्रह्मगिरी से निकली गोदावरी ब्रह्म के तप स्थल तक कल कल करती आती है और समुद्र से मिलन करती है। समुद्र के भीतर कोई 4 मील दूरी पर होता है महोत्तम संगम। ये दृश्य नीले आकाश और नील समुद्र जल के मिलन की परछाई दिखाने वाले दर्पण सा लगता है। गोदावरी की यात्रा अतीत से वर्तमान यात्रा, सभ्यता और संस्कृति के विकास और ज्ञान की यात्रा।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध।

नाव मझधार में आने, आधी उठत प्रचंड, आधी उठता

शिव महिमा। प्रस्तुत है शिव पुराण एवं अन्य पुराणों और उपनिषदों पर आधारित यह कार्यक्रम शिव महिमा।

शिव पुराण का अगला खंड विद्येश्वर संहिता से है, जिसमें शिव जी की महिमा के अनेक प्रसंग हैं। इस अध्याय के अलग अलग प्रसंग हम अलग अलग प्रकरणों में सुनाएंगे। आज हम रुद्र संहिता के प्रथम खंड से कार्यक्रम आरंभ कर रहे हैं।

0: एक समय मुनिवर नारद जी हिमालय पर्वत पर तपस्या के लिए गए। हिमालय की उस एकांत कंदरा में देवर्षि नारद को शिव की तपस्या करते हुए अनेक वर्ष बीत गए। उनकी तपस्या का समाचार इंद्र तक पहुंचा।
1: आहा, रंभा, मेनका, उर्वशी, तुमने अत्यंत मोहक नृत्य करके हमें मोह लिया है।
2: अरे ये हमारा सिंहासन हिल कैसे रहा है?
1: क्या मृत्युलोक में इंद्रासन पाने की कोई चेष्टा कर रहा है? देवदूतों, तुरंत पृथ्वी पर जाओ और मालूम करो कि हमारे सिंहासन के हिलने का क्या कारण है।
3: जैसी आज्ञा देवेंद्र। चिंता की कोई बात नहीं, उर्वशी, मेनका, रंभा, नृत्य चलता रहे।
4: जो आज्ञा महेंद्र।

0: क्या समाचार है देवदूत?
1: हे देवेंद्र, समाचार मिला है कि हिमालय पर्वत की एक कंदरा में देवऋषि नारद अनेक वर्षों से कठोर तपस्या में लीन हैं। उनके तप के प्रभाव से तीनों लोकों के देवी देवता और साक्षात ब्रह्मा, विष्णु और महेश अत्यंत प्रसन्न हैं।
0: अच्छा, कहीं उनकी इच्छा हमारे सिंहासन पर अधिकार करने की तो नहीं है? उर्वशी, रंभा, मेनका, तुम अभी पृथ्वी पर जाओ और किसी भी प्रकार महर्षि नारद का तप भंग करो। अपने साथ कामदेव को भी ले जाओ, जिससे देवऋषि नारद का मन विचलित हो जाए।
2: जैसी आज्ञा देवेंद्र।
3: हम अभी पृथ्वी लोक पर जाते हैं
2: और महर्षि नारद का तप भंग करते हैं। सखी उर्वशी, महर्षि नारद तो तपस्या में पूरी तरह खोए हुए हैं।
3: हाँ, उनका तप भंग करना कठिन जान पड़ता है।
2: चलो नर्तन करते हैं।
3: हाँ, चलो।

0: सखी, हमारे नृत्य का तो नारद पर कोई प्रभाव ही नहीं हो रहा।
1: तो सखी, क्यों ना कामदेव से निवेदन किया जाए?
2: हाँ, ये ही उचित है।
1: हे कामदेव, हम तो असफल हो गए। कृपा करके आप अपने प्रभाव से महर्षि नारद की तपस्या में विघ्न उपस्थित कीजिए ना।
3: ठीक है, ये तो मेरे लिए अत्यंत सरल है। अरे आश्चर्य, मेरे पंच बाणों का देवर्षि नारद पर कोई प्रभाव नहीं।
1: बड़े आश्चर्य की बात है कामदेव, आपके बाणों से तो आज तक कोई नहीं बचा।
2: ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ।
0: इसमें अवश्य कोई गंभीर रहस्य है।
3: रुको, मुझे तनिक चिंतन करने दो। ओ, आप समझा, बहुत पहले भगवान शिव ने इसी आश्रम में तपस्या की थी और इसी जगह भगवान शंकर ने मुझे भस्म किया था। बाद में रति की प्रार्थना से मुझे नया जीवन मिला था। इस स्थान की महिमा के कारण यह मेरा प्रभाव क्षीण हो गया है।
1: तो अब क्या करें?
0: चलो देवराज इंद्र को जाकर सारी बात बताएं।
2: हाँ, वही कोई उपाय बताएंगे।
4: अच्छा, देवर्षि नारद की तपस्या भंग नहीं हो सकी?
3: हे देवेंद्र, इसमें मेरा कोई दोष नहीं। शायद वो स्थान

0: ही कुछ।
1: हम जानते हैं कामदेव, तुम विश्राम करो।
2: हे देवराज इंद्र, अब हमारे लिए क्या आज्ञा है?
3: आपके सिंहासन की सुरक्षा के लिए
1: चिंता की कोई बात नहीं हरंभा, क्योंकि स्पष्ट हो गया है कि महर्षि नारद इंद्रासन के लिए तपस्या नहीं कर रहे हैं।
3: हे देवेंद्र, ये जानकर हमें भी सुख मिला।
1: अप्सराओं, नृत्य आरंभ करो।

0: नारायण, हे कामारे, आप तो त्रिकालदर्शी हैं। जानते ही होंगे कि मेरी तपस्या में विघ्न उपस्थित करने के लिए इंद्र ने कामदेव को भेजा था, लेकिन वो सफल नहीं हो सका। महादेव, अब मैं भी कामारे हुआ।
1: तात नारद, मुझे सब कुछ भली प्रकार ज्ञात है। तुम बड़े विद्वान हो, परंतु मेरी ये बात ध्यान देकर सुनो। भविष्य में कभी ऐसी बात किसी से भी ना कहना, विशेषकर भगवान विष्णु से इसकी चर्चा कदापि ना करना।
0: नारायण नारायण, हे शिव शंभु, जैसी आपकी इच्छा, किंतु मैं मन ही मन अत्यंत प्रसन्न हूं। हे महादेव, मुझे आज्ञा दें। नारायण नारायण।
2: आइए पधारिए देवऋषि, ब्रह्मलोक में आपका स्वागत है। बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं, कोई विशेष बात?
0: नारायण नारायण, हे परमपिता ब्रह्मा, आप तो जानते ही होंगे कि हिमालय की कंदराओं में घोर तपस्या के बाद आपके श्री चरणों में उपस्थित हुआ हूं।
2: हाँ महामुनि, हमें यह भी याद है कि आप देवराज इंद्र के गर्व को चूर करने में सक्षम सिद्ध हुए हैं। लेकिन महामुनि, ये बात आप भगवान विष्णु से कदापि ना कहिएगा।
0: हे परमपिता ब्रह्मा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं?
2: ये बात हम आपके भले के लिए ही कह रहे हैं, आगे जैसी आपकी इच्छा।
0: नारायण नारायण नारायण नारायण।
2: हे लक्ष्मीपति, देवऋषि नारद पधारे हैं,
3: उन्हें सादर ले आओ।
2: जो आज्ञा।
3: हे लक्ष्मी, आप जानती हैं इस समय नारद गर्व में चूर हैं।
4: हे चक्रधर, क्या आपके मन में उनके गर्व को खंडित करने की कोई योजना है?
3: हे महादेवी, हम वही करेंगे जो उनके हित में होगा।
0: नारायण नारायण नारायण। हे देवाधिदेव, आपके चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम।
3: आइए देवर्षि, पधारिए। कहां कहां का भ्रमण करके आ रहे हैं?
0: कहीं विशेष नहीं भगवान विष्णु, एक लंबी तपस्या के बाद
3: शिवलोक और ब्रह्मलोक का भ्रमण करके आ रहे हैं, ठीक है ना?
0: नारायण नारायण, आप तो घट घट वासी हैं प्रभु, आपसे क्या छुपा है? आप ये भी जानते ही होंगे कि
3: हाँ, कि आपने घोर तपस्या के बल पर कामदेव को जीत लिया है। आप तो निष्ठावान हैं, ब्रह्मचारी हैं, फिर आप में काम विकार कैसे आ सकते हैं? क्यों, ठीक है ना?
0: स्वामी, जब मुझ पर आपकी कृपा है, तब बेचारा कामदेव अपना क्या प्रभाव दिखा सकता है? नारायण नारायण। अब अनुमति दें प्रभु।
3: हे देवर्षि, आपका कल्याण हो।
0: नारायण नारायण
4: नारायण। हे स्वामी, सचमुच देवर्षि नारद के मन में घमंड आ गया है।
3: हाँ, हमें इसका

0: पहले से ही अनुमान था। देवदूत,
1: आज्ञा प्रभु।
0: माया को बुलाओ।
1: जैसी आज्ञा प्रभु।
2: स्वामी, क्या माया जाल रचकर देवर्षि नारद को पाठ पढ़ाना चाहते हैं?
0: हाँ, यही एक सबसे अच्छा उपाय है।
3: मैं उपस्थित हूँ प्रभु।
0: माया, अभी अभी देवर्षि नारद पृथ्वीलोक की ओर गए हैं। उनकी राह में एक विशाल नगर की रचना करो, जो वैकुंठ लोक से भी अधिक रमणीय हो। वहां के राजा शील नीति की अत्यंत सुंदर कन्या के स्वयंवर का आयोजन करो।
3: जैसी आज्ञा प्रभु।

0: है, कैसा अद्भुत नगर है, लगता है स्वर्गलोक में आ गया हूँ। नारायण नारायण, यहाँ के राजा इंद्र से भी अधिक वैभवशाली लगते हैं। ये राजभवन तो जैसे मन में उत्सुकता जगा रहा है। नारायण नारायण, चलो यहाँ के राजा से मिलूं।
1: देवर्षि नारद, धन्य भाग जो आपने इस नगरी को पवित्र किया। आसन ग्रहण कीजिए प्रभु।
0: नारायण नारायण, राजन आपकी नगरी तो नववधू की तरह सजी हुई है, है? इसकी सुंदरता तो देखते ही बनती है। नारायण नारायण, ये सुकन्या कौन है?
1: ऋषिवर, ये मेरी पुत्री है, इसका नाम श्रीमती है। अब इसके विवाह का समय आ गया है। ये अपने वर को चुनने के लिए शीघ्र ही स्वयंवर में जाने वाली है।
0: राजन, आपकी ये पुत्री सारे शुभ लक्षणों से संपन्न है।
1: महर्षि, तनिक इसका भाग्य बताइए।
0: सुनो राजन, इसका भावी पति निश्चय ही भगवान शंकर के समान होगा, वैभवशाली, किसी से पराजित न होने वाला, सारे देवताओं में श्रेष्ठ।
1: महर्षि, आपके इन वचनों से मैं धन्य हो गया।
0: राजन, मैं सत्य कह रहा हूं, इस कन्या का वरण करने वाला सारे संसार में सर्वश्रेष्ठ होगा। ऐसा कोई इस पृथ्वी पर न तो हुआ है न होगा। अब आज्ञा दीजिए, हम चलते हैं।

0: नारायण नारायण।
1: अरे महामुनि नारद, आप फिर यहाँ? सब कुशल तो है ना?
2: भगवान, मैं एकांत में आपसे कुछ कहना चाहता हूँ।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, आइए इधर आइए। हाँ कहिए महामुनि, अब अपनी बात कहिए।
2: भगवान, पृथ्वी पर राजा शील नीति की एक अत्यंत सुंदर कन्या है, उसका नाम श्रीमती है। आज ही उसका स्वयंवर है, चारों दिशाओं से वहां अनेक राजकुमार पधारे हैं। नाथ, मैं उस कन्या से विवाह करना चाहता हूँ।
1: अच्छा, तो मुझसे आप क्या चाहते हैं?
2: प्रभु नारायण, प्रभु आप मुझे अपना स्वरूप दे दीजिए, जिससे राजकुमारी मुझको वर के रूप में चुन ले। नारायण नारायण।
1: महामुनि, आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं उसी तरह आपका हित साधन करूंगा जैसे एक अच्छा वैद्य किसी पीड़ित रोगी का करता है।
2: प्रभु, आपने ये बात मेरे मन के अनुकूल ही कही है। मैं तुरंत पृथ्वीलोक में जाता हूँ।

0: नारायण नारायण। कैसा अद्भुत दृश्य है, सैकड़ों राजकुमारों के बीच वो कन्या किसको चुनेगी? निश्चय ही मुझे। मैं भगवान विष्णु का रूप जो हूँ।
1: अरे वाह, आपका स्वरूप तो दिव्य है श्रीमान। हमने आज तक संसार में ऐसा प्राणी नहीं देखा।
2: तुमने बिल्कुल ठीक कहा बंधु। देखो ना कितना तेजस्वी शरीर है और उस पर कितना अद्भुत मुख, जैसे संसार के सभी प्राणियों के स्वरूप को एक रूप दे दिया हो। कैसी दिव्य आकृति है।
1: बंधु, आपका परिचय जानने की धृष्टता कर सकता हूँ?
0: भला मेरा क्या परिचय, समझिए कि बस हरि का भक्त हूँ।
2: लेकिन आप तो साक्षात हरि हैं।
1: हरि यानी बंदर?
2: नहीं नहीं, हरि यानी विष्णु।
0: क्या आप भी स्वयंवर की इच्छा से आए हैं?
1: अरे नहीं महोदय, आपके स्वरूप के सामने भला हम क्या हैं?
2: महोदय, इस पूरी सभा में केवल आप ही आप हैं।
3: जी बाबा, मुझे को राजकुमारी की आ रही है। हंसी टिटोली बंद करो।
1: गंभीर होकर बैठ जाइए।
2: अब तक कहीं इतना भी गंभीर ना हो जाना कि आंखों से आंसू ही निकल पड़े।
0: अरे राजकुमारी इधर तो आ ही नहीं रही है।
1: शायद असमंजस में है, आपकी ओर उनका ध्यान ही नहीं गया।
4: हाँ, अगर आपको देख लेती तो कहीं और देखने का प्रश्न ही नहीं उठता था।
0: अरे ये कैसी जोड़ी।
1: अरे हाँ, सारा सभागार प्रकाश से भर उठा है।
4: लगता है कोई दिव्य पुरुष है। देखो
1: हाँ,
4: राजकुमारी उधर ही बढ़ रही है।
1: अरे ये क्या, वो दिव्य पुरुष तो राजकुमारी को लेकर चला गया
2: और स्वयंवर समाप्त हो गया।
1: हाँ महोदय, आपकी इच्छा तो मन की मन ही में रह गई।
2: आपके हरि स्वरूप को छोड़कर राजकुमारी किसके साथ चली गई?
1: हाँ,
3: ये अनर्थ है, अन्याय है। साक्षात हरि के स्वरूप को छोड़कर राजकुमारी ने किसका वरण कर लिया?
1: श्रीमान, आपने दर्पण देखा है?
2: अपना स्वरूप तो देखिए।
3: तुम मेरा परिहास कर रहे हो?
1: नहीं नहीं, परिहास नहीं श्रीमान, आभास करा रहे हैं
2: आपको, आपके स्वरूप का आभास।
3: क्या कहना चाहते हो तुम?
1: प्रभु, आपके सुंदर बदन पर बंदर का मुख है।
0: बंदर का?
2: हाँ श्रीमान, इसीलिए आपका रूप असाधारण है।
3: तुम दोनों ने मुझ ब्राह्मण का उपहास किया है, इसलिए तुम ब्राह्मण से उत्पन्न राक्षस हो जाओ। ब्राह्मण की संतान होने पर भी तुम दोनों का आकार राक्षस के समान होगा।
0: नारायण नारायण नारायण नारायण, ये अशोभनीय है।
5: देवर्षि देवर्षि, आप इतने कुपित क्यों हैं?
3: आप बड़े मायावी हैं। आपने आपने मुझसे कपट किया है, कपट।
5: ऐसा क्या हुआ देवर्षि?
3: आपने स्त्री के लिए मुझे व्याकुल किया। मैं शाप देता हूँ, आपने मुझे जो रूप दिया उसी के कारण आप मनुष्य हो जाए, स्त्री के वियोग का दुख भोगे। और जिन बंदरों के समान आपने मुझे रूप दिया है वही बंदर आपके सहायक हो। ये मेरे

0: आपके इस श्राप को मैं स्वीकार करता हूं। वास्तव में ये सब शिव शंकर का प्रताप है। उन्हीं की इच्छा से मैंने विश्व मोहिनी माया के द्वारा आपको मोहित किया था। भगवान शिव की इच्छा से अब मैं अपनी माया को समेटता हूं।
1: अरे ये क्या, तो क्या माया के कारण ही मैं भ्रम में पड़ गया था? हे नाथ, माया से मोहित होने के कारण मेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। मैंने आपको श्राप दे डाला। हे प्रभु, उस श्राप को मिथ्या कर दीजिए। प्रभु, उसको मिथ्या कर दीजिए। मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, बहुत बड़ा पाप किया है प्रभु। हे विष्णु, बताइए मैं कौन सा प्रायश्चित करूं जिससे मेरे पाप नष्ट हो जाए। प्रभु बताइए।
0: तात, खेद ना करो, भगवान शिव तुम्हारा कल्याण करेंगे। तुमने महादेव की बात नहीं मानी, इसीलिए भगवान महेश्वर ने तुम्हें ऐसा फल दिया।
1: हे विष्णु, मुझे पश्चाताप हो रहा है। मुझे इस वेदना से बचाइए।
0: हे मुनि नारद, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूं। तुम भगवान शंकर की स्तुति करो, उन्हीं की उपासना करो और उन्हीं का भजन करो। हे देवर्षि, भगवान शिव तुम्हारा कल्याण करेंगे।
1: नारायण नारायण।
2: हे शौनक, भगवान विष्णु के अंतर्धान हो जाने पर मुनिवर नारद महेश्वर के शिवलिंगों के भक्ति पूर्वक दर्शन करते हुए पृथ्वी पर विचरने लगे।
3: हे सूची, फिर उन दोनों पार्षदों का क्या हुआ? वे कौन थे?
2: शौनक, शिव के पार्षद उनके श्राप के कारण अगले जन्म में रावण और कुंभकर्ण हुए।
3: और देवर्षि नारद ने जो भगवान विष्णु को श्राप दिया था, उसका परिणाम क्या हुआ?
2: उनके श्राप के कारण भगवान विष्णु को मनुष्य रूप में श्री राम का अवतार धारण करना पड़ा और उनके हाथों शरीर त्याग कर रावण और कुंभकर्ण को मोक्ष प्राप्त हुआ।
3: महामुनि देवर्षि नारद की कथा सुनकर मैं धन्य हुआ।
2: हे शौनक, रुद्र संहिता के अनुसार पांचवें खंड तक की ये कथा भगवान शिव के प्रताप को बताने वाली है। ये कथा मनुष्य के लिए अत्यंत कल्याणकारी है।
3: हे सूची, मेरे मन में एक जिज्ञासा है।
2: निसंकोच कहो।
3: आपने बताया कि मोह के बंधन से छूटने पर देवर्षि नारद ने पृथ्वी पर शिवलिंगों का दर्शन किया और उनकी उपासना की। शिव के लिंग स्वरूप और मूर्ति स्वरूप का रहस्य क्या है?
2: शौनक, तुमने अत्यंत सुंदर प्रश्न किया है। एकमात्र भगवान शिव ही ब्रह्म रूप होने के कारण निराकार कहे गए हैं। साथ ही रूपमान होने के कारण उन्हें साकार भी कहा गया है। इसलिए वे साकार और निराकार दोनों ही हैं। शिवलिंग भगवान महावीर के निराकार स्वरूप का प्रतीक है और शिव का साकार रूप उनके विक्रेय का प्रतीक है।
3: भगवान शिव से भिन्न जितने भी देवता हैं, उनकी पूजा मूर्ति रूप में ही अधिक होती है, लेकिन भगवान शिव की दोनों रूपों में पूजा करने का क्या रहस्य है?
2: शौनक, लिंग साक्षात ब्रह्म का प्रतीक है जो निराकार और निरानंद है। वे सभी जगह व्याप्त हैं, किंतु उनका कोई रूप नहीं। उस परम ज्योति के परमात्म प्रकाश को ही लिंग रूप में पूजा जाता है। लेकिन त्रिदेव तीनों देवों में अर्थात ब्रह्मा विष्णु और महेश में जो संसार के उत्पत्ति करता पालन करता और संहार करता है, भगवान शंकर का

0: प्रतिरूप जितना विस्मयकारी है उतना ही ज्ञानमय भी है। वास्तव में शिव के स्वरूप के प्रत्येक अंग का विवेचन भी हमें निराकार और साकार उपासना के रहस्य को भी समझाने में समर्थ हो सकता है। इसका विवेचन विस्तार से करेंगे।
1: श्रोताओं, अभी आप शिव पुराण के रुद्र संहिता के आरंभ के अध्यायों का सार सुन रहे थे।

0: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम,
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना।

ਹੋਟਾਲਾ ਗੁਰ ਸੇਵਿਆ ਕਹੋ ਟਲ

मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग,

0: सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध।

प्रभु श्री राम भरत जी को विदा कर पहुंचते हैं पंचवटी, जहां पर 14 वर्ष बिताने का निर्णय लेते हैं। तभी सूपनखा वन में घूमते घूमते प्रभु श्री राम को देख मुग्ध हो उठती है और राम से विवाह करने का प्रस्ताव कुछ इस प्रकार से रखती है।

प्रभु श्री राम सूपनखा का आत्मनिवेदन न मानते हुए अपने भाई लक्ष्मण को इशारा करते हैं और भाई लक्ष्मण अपने प्रभु राम जी का आदेश पाते ही तीर से सूपनखा की नाक काट लेते हैं।

और उधर रावण के दरबार में राग रंग उत्साह, जेहर देखा हर तरफ खाली वाहे वाह। इतने में रोवत उहां गैल सूप नखा आए, पड़ल रंग में भंग औ गैल सनाका छाए। और यह देख रावण अपनी बहन का हाल मारीच को समझा बुझाकर उसे स्वर्ण मृग के रूप में पंचवटी भेजते हैं।

के अपमान का बदला लेवे बदे सीखौलस, बहनी के अपमान का बदला लेवे बदे सीखौलस, काना भूसी कैलस हंस के ऐसन मंत्र।

लक्ष्मण का समझाए के राम बढ़ौले पाँव, सीता लक्ष्मण रह गए पंचवटी के छाँव। सीता जी की मांग पूरी करने के लिए प्रभु श्री राम स्वर्ण मृग के पीछे चल पड़ते हैं और प्रभु राम का तीर लगने पर मारीच राम जी की आवाज़ में हाय लक्ष्मण पुकार उठते हैं। यह सुन सीता घबरा उठती हैं और गुस्से में जानकी जी लक्ष्मण को कठोर वचन कहते हुए प्रभु राम को खोजने के लिए वन की ओर भेजती हैं। उसके पश्चात साधु के वेश में रावण पंचवटी में सीता से भीख मांगने पहुंचते हैं।

लक्ष्मण रेखा पार करने पर रावण असली रूप धारण करके सीता का हरण करते हैं। अब राम लक्ष्मण पंचवटी पहुंचकर सीता को ना पाकर विलाप करते हुए घायल जटायु से मिलते हैं। गिद्धराज राम लक्ष्मण को सीता हरण की दिशा बताते हैं और सीता की खोज करते हुए दोनों भाई शबरी के आश्रम पहुंचते हैं। यह देख शबरी अत्यधिक भक्ति में लीन हो जाती हैं।

छांदोग्य श्रुति अनुसार भगवती शक्ति थी उत्पन्न थयेल सनत कुमार नु नाम पण स्कंद छे। संस्कृत साहित्य में एक विनोदजनक सुभाषित स्कंद ना कार्तिकेय ना संदर्भ में मळी आवे छे। श्लोक सांभळी। हाँ,

नमस्ते जगत तारिणी त्राही दुर्गे। हे शरण आपवामां कुशल कल्याणमयी दयामयी जगद्व्यापिके विश्वयमनु स्वरूप छे एवं जगदवंद्य चरणारविंद थी सुशोभित हे माँ दुर्गा अमारू आपत्तियों माथी रक्षण करो, रक्षण करो।

सिंह ऊपर विराजिला, मस्तक ऊपर चंद्र धारण करनार, लीलम मरकट लीलम मणि जेवा शोभता, शंख चक्र धनुष्य अने बाणने पोतानी चार भुजाओ थी धारण करता, त्रण नेत्रोथी

शोभित मधुर शब्द करती घुघरियो वाला कंदोरा थी अने रणकार करता झांजर थी शोभता रत्न थी उज्ज्वल कुंडल वाला श्री दुर्गा माता अमारा दारिद्र्य अने दुःखनो नाश कर।

0: cagada, cagada, mano mayo.
1: Antara chiru, cagada.

बाल कृष्ण की प्रीत में तन्मय हर गोपी दिन रात कान्हा के ही सपने देखती है। मुरली मनोहर कृष्ण कन्हैया ग्वाल बाल संग गोकुल में गैया चराते, बंसी बजाते, माखन चुराते और गोपियों संग रास रचाते हुए मनमोहक लीलाएं करता है। यमुना किनारे सांझ सकारे जब गोपाल मुरली की मधुर मधुर धुन छेड़ता है, तब गोपियां सुध बुध खो बैठती हैं। कृष्ण भक्त गोपी राधा नंदलाल से प्रीत तो कर बैठी, मगर उसे चिंता सताती कि कहां त्रिभुवन का स्वामी सर्वव्यापी नारायण और कहां वो ब्रज की एक साधारण सी गोपी। वो ध्यान में मग्न बंसी भजैया से पूछती रहती, हे गोविंद बांके बिहारी तू ही बता कैसे निभेगी प्रीत हमारी।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति। अयोध्या से रामलला की श्रृंगार।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।